0: Deixa eu balançar.
1: पहले गीत सुन लेते हैं, फिर दोबारा आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का वो बातें जो खुद परेश रावल ने शेयर की हैं।

0: आकाशवाणी 100.1 MHz पर बात कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम परेश रावल की। और हमने आपको बताया था कि फिल्म हेरा फेरी जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है, सबसे अच्छा सबसे प्रसिद्ध हास्य भूमिका जिसको माना जाता है, उस फिल्म के बारे में परेश रावल ने खुद ने जो अपने व्यूज़ दिए वो ज़रा से हटके थे। हालांकि वो अपनी इस फिल्म की कामयाबी से, अपने किरदार की कामयाबी से बहुत खुश ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अलग तरह की बात भी कही।
1: आपको एक बात में बोलूँगा, बड़ा आपको ताज्जुब होगा, मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं। मैं 2007 में विशाल भारद्वाज जी के पास गया था कि विशाल भाई, 2006 में पार्ट टू रिलीज हुई थी, और विशाल भाई मेरे पास एक फिल्म है, मुझे इसकी जो इमेज है मुझे इससे छुटकारा चाहिए। सेम गेटअप के अंदर अलग किस्म का रोल वो आप करके दे सकते हैं मुझे। तो क्या बात, क्यों छुट, मतलब नहीं मुझे अभी क्या हो गया, जो भी आता है उसके दिमाग में हेरा फेरी है, जो भी आता है। तो मुझे तो, मैं एक्टर हूँ यार, मुझे फंसना नहीं है इस दलदल में। तो यार परेश भाई मैं रीमेक नहीं करता हूँ ना, ओके फाइन अंडरस्टैंड। तो एक खुशी तो होती है यार, बड़े फिर बहुत

0: वाली चीज है, आपको इससे मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए यार।
1: तो ये परेश रावल के व्यूज खुद अपने इस रोल के इस फिल्म के बारे में थे। परेश रावल ने फिर इस फिल्म के सीक्वल फिर हेरा फेरी में भी 2006 में काम किया और उसमें भी बाबू राव की अपनी भूमिका को दोहराया जो कि फिर से बहुत बहुत कामयाब रही। तो चलिए फिर हेरा फेरी का एक वो वाला गीत सुनते हैं जिसमें पर्दे पर गीत गाते हुए अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को लगातार परेशान करते हुए और जॉनी लीवर को भी लगातार परेशान करते हुए इस गीत में दिखाई देते हैं परेश रावल।

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और 104 एफएम मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 मई महीने की 30 तारीख व दिन है शनिवार। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री थुतन दाशी, नियंत्रक कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री तानिंग ताको और श्री कामयांग फो, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री ए के दास और सुक्षी शिकडेका, मुनपा में उद्घोषक श्री संगीताशी तथा अन्य सहकर्मी के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका येशी पेमा। हम सभी आकाशवाणी सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में पहले आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड-डे न्यूज दोपहर 2 बजे तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन नाउलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओ मिन नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
4: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन

0: करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CoET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी,

0: काराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिंट नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में श्रोताओं, आप सुनिए अनुप जलोटा के गाये चंद एक भक्ति गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना अभी पर समाप्त हुआ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। लीजिए श्रोता, पेश है विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत में आज आप सुनिए नंग सेनावती मनांग चौ सुविनवय लोंकन सिरथम नामचम नंग चनावा मंजे और चौ उविनवय लोंकन से चनादोने खमती गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने कार्यक्रम परेशी संगीत में नंग सिनवती मनांग चौस्विन्वय लंकन स्थिरथम नमचम नंग चनवा मंजे और चौ विविन्वय लंकन से चनादो ने खमती गीत सुना। अभी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। मिरु में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ज और साथ ही 104 एफएम मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, पेश है दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। कार्यक्रम मेरी बात में आज आप सुनिए पीएम श्री जैन वी तांग के कक्षा 9वीं की छात्रा टीटी फाचंग से एक वार्ता। विषय है पुस्तकें पढ़ने से हमारा दृष्टिकोण कैसे बदलता है।
1: नमस्कार, आप सभी को आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं टीटी फाचंग, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग, कक्षा 9वीं की छात्रा। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप की विषय किताब पढ़ने से हमारा नजरिया कैसे बदलता है। मनुष्य का जीवन अनुभव से बनता है और किताबें हमें ऐसा अनुभव देती है जो हमें कभी स्वयं नहीं जिए होते। किताबें हमारे विचारों को दिशा देती है और हमारी सोच को गहराई प्रदान करती है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम केवल शब्दों को नहीं पढ़ते बल्कि हम लेखक की सोच, उसके संघर्ष और उसके सपनों से जुड़ जाते हैं। इससे हमारे नजरिए में बदलाव शुरू होता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, किताबें वह आईना होती है जिसमें हम खुद को भी पहचान पाते हैं। किताबें वह अच्छा इंसान बनाने की सलाह देती है। वे ईमानदारी, सच्चाई और सम्मान जैसे मूल्यों को मजबूत करती है। किताबें हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है। किताबें हमें यह भी सिखाती है कि दुनिया को सिर्फ अपने नजर से नहीं बल्कि दूसरों की नजर से भी देखना चाहिए। जब हम किसी कहानी के पात्र का दर्द समझते हैं तो हमारे भीतर संवेदनशीलता बढ़ती है। हम दूसरों के प्रति अधिक सहनशील और समझदार बनते हैं। इतिहास की किताबें हमें यह सिखाती है कि गलतियों से क्या सीख मिलती है। विज्ञान की किताबें हमें सोचने का नया तरीका देती है और सेहत की किताबें हमारे दिल और दिमाग दोनों को छू जाती है। एक प्रसिद्ध विचार है, जो किताबें नहीं पढ़ता वो सीमित सोच में जीता है और जो पढ़ता है वो खुले

0: विचारों के साथ जीवन जीता है। आज के समय मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। जानकारी तो हमें हर जगह मिल जाती है, लेकिन समझ और विवेक हमें किताब से ही मिलती है। किताबें हमें सिखाती है कि हर बात का उत्तर तुरंत नहीं होता, कुछ सवालों के लिए देरी और सोच की जरूरत होती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, अच्छी पुस्तकें मनुष्य की अच्छी मित्र होती है। किताबें हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्ञान केवल स्कूल और किताबों की पढ़ाई से ही मिलता है, लेकिन यह सच नहीं। महान लेखकों व्यक्तियों द्वारा लिखे गए किताब भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। किताबें पढ़ने से हमारी भाषा सुधरती है, हम अपने विचार बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक किताब कई बार हमें मुश्किल समय में सही राह दिखा देती है। कहानियां हमें सपने देखना सिखाती है, जीवनी हमें संघर्ष से डरना नहीं सिखाती और पढ़ी पुस्तकें हमें हार न मानने की शक्ति देती है। एक बहुत गहरी बात कही गई है, किताबें जल सकती है लेकिन उनसे निकले विचार कभी नहीं मरते। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि किताबें पढ़ना केवल एक शौक नहीं, यह व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति पढ़ता है वो हर दिन थोड़ा और बेहतर बनता है। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि रोज थोड़ा समय किताबों के लिए निकालेंगे, क्योंकि किताब हमारे सोच को बदलती है और सोच बदलने से पूरा जीवन बदल सकता है। धन्यवाद।
1: श्रोता, अभी आपने दैनिक कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जैन विद्वांग के 9वीं की छात्रा टीटी फाचांग से एक वार्ता सुना। विषय था पुस्तकें पढ़ने से हमारा दृष्टिकोण कैसे बदलता है।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 होने वाले हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए सुनते हैं। पाटन फिल्म से सोनू निगम और कुणाल गांजावले की आवाजों में। इस गीत के रचयिता शबीर अहमद तथा संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

श्रोता, अभी आपने कुमार के रचे बोल पर फिल्म बागी से मीट प्रोस एफटी अर्जुन सिंह, रोज किल्ला और खुशबू ग्रेवल की आवाजों में एक गीत सुना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, ओम शांति ओम फिल्म से के आवाज में। इस गीत को बोल दिया है विशाल ददलानी ने तथा संगीत से सवारा है विशाल शेखर ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही महिला पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त हुआ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:50 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए सुनते हैं, युवराज फिल्म से पेनी दयाल और श्रेया घोषाल के आवाजों में। इस गीत के रचयिता गुलजार तथा संगीत दिया है AR रहमान ने।

पापोन की आवाज में श्रोताबे आपने फिल्म दम लगा के हिस्सा से एक गीत सुना। इस गीत के रचयिता वरुण ग्रोवर तथा संगीत दिया था अनु मलिक ने। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। कुणाल वर्मा के रचे बोल पर फिल्म अमर प्रेम की प्रेम कहानी से अरिजीत सिंह की आवाज में।

प्रीतम के संगीत पर श्रोता भी अपने फिल्म एनिमल से एक गीत सुना। इस गीत के गायक थे राघव चैतन्य और प्रीतम। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, शैतान फिल्म से सुबेन नौटियाल की आवाज में। इस गीत को बोल दिए हैं कुमार ने तथा संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोता, अभी आपने फिल्म गदर 2 से अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाजों में गीत सुना। इस गीत के रचयिता साहिद कदरी तथा संगीत दिया था मिथुन ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म बागी फौसे अगस्त के संगीत पर जोश परर और परंपरा तंदुन की आवाजों में।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत जनादू ने एक हिंदी फिल्मी गीत। अब यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियमवेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ और 7104 एफएम मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:23 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इसमें श्रोताओं आज आप सुनिए अली अकबर खान से सरोद वादन, राग है मंज खमज।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत अली अकबर खान से सरोद वादन राग था मंज खमंज। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार 4:45 पर तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

यह आकाशवाणी है, अभी अंगूरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार पहुंचे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने सैन्य सेवाओं से विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 31 मई 2026 रविवार को सुबह 11 बजे करेंगे। शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने लोअर दिबांग वैली जिले के भाजपा कार्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान सियांग जोनल फेज 2026 में हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के लिए समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में अपना 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। बैडमिंटन में सिंगापुर अपने सुपर 750 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत की मिक्स्ड डबल जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिसा क्रास्टो का मुकाबला जापान की सायका होबारा और युइची शिमोगामी से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशियाई संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। सुश्री शर्मा ने कहा कि भारत कच्चे तेल की भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी काम जारी है। सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। संयुक्त सचिव ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी कि कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित हो रही है। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने कहा कि मंत्रालय नाविकों के कल्याण और निर्बाध समुद्री संचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और समुद्री क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने बताया कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस, केरोस, हरमुज, जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है।

कि 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मैट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित है और भारतीय ध्वज वाले या स्वदेशी ध्वज वाले व्यापारिक पोतों पर भारतीय नाविकों से जुड़ी कोई भी घटना नहीं हुई है। म्यांमार के राष्ट्रपति मीन आंग हलाउंग आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। उन्होंने बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोध मंदिर का दर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने बकराऊ स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में मत्था टेका और बोधगया स्थित बर्मी मठ का भी दौरा किया। उसके साथ वरिष्ठ अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है। इसके सब बाद राष्ट्रपति मीन आंग हलाइंग आज नई दिल्ली पहुंचे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति मीन सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। इस यात्रा के अंतर्गत राष्ट्रपति मीन व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। यह समारोह देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी के रूप में उनके विशिष्ट कार्यकाल के समापन का प्रतीक था। समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद जनरल चौहान ने कहा कि तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सेवानिवृत्त होना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। 4 दशकों से अधिक की सेवा के बाद जनरल चौहान ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक और उत्कृष्ट बताया। 1981 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने वाले जनरल चौहान ने 40 वर्षों से अधिक समय तक देश की सेवा की और अपने शानदार सैन्य करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण कमान और स्टाफ पदों पर रहे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल एस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का संबोधन 31 मई 2026 रविवार को सुबह 11 बजे करेंगे। यह इस लोकप्रिय कार्यक्रम की अगली कड़ी होंगी जिसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने लोअर दिबांग वैली जिले के भाजपा कार्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान सियांग जोनल फेज 2026 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने और जनसेवा के प्रति समर्पित होकर काम करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि भारतीय हज मिशन को पहली बार सऊदी हज और उमरा मंत्रालय द्वारा हज समन्वय और संचार में उत्कृष्टता के लिए 2 प्रतिष्ठित लब्बेतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि हज का सफल आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारतीय हज समिति और सऊदी अरब में भारत के राजदूत तथा जेद्दा में महावाणिज्य दूत के नेतृत्व में भारतीय हज मिशन के बीच सहज समन्वय को दर्शाता है। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। गया में 3, औरंगाबाद में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि सारण और खगड़िया जिलों में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मरने वाले लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान

0: पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के लिए समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने जन जागरूकता को बढ़ावा देने, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री बिरला ने कहा कि तीव्र तकनीकी प्रगति के इस दौर में भी हिंदी की प्रासंगिकता निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हिंदी अब केवल समाचार पत्रों और टेलीविजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकों के माध्यम से लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिंदी में समाचारों, विचारों और विश्लेषण की बढ़ती स्वीकार्यता इस भाषा की शक्ति और व्यापक पहुंच दर्शाती है। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में अपना 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया, जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के संरक्षण के बीच सफलतापूर्वक संतुलन बनाए रखा है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, the news read by Priya Badu. Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi today said the Indian Armed Forces remain on high operational alert and are prepared for Operation Sindoor 2.0 if the situation warrants further military action. Addressing the passing out parade of 158 corps at National Defence Academy in Kharagwalsa, Pune, General Dwivedi said Operation Sindoor demonstrated India's ability to respond to provocation with precision and resolve, setting a benchmark for the country's response to emergency security challenges. General Dwivedi said Operation Sindoor reflected the nation's resolve and underscored the importance of synergy among the armed forces. President of Myanmar, Min Aung Hlaing, arrived today at Gaya in Bihar on a five-day visit to India. He visited the world-renowned Mahabodhi Temple in Bodh Gaya and offered prayers at the sacred Buddhist site. He also meditated under Revered Bodhi Tree, where Lord Buddha is believed to have attained enlightenment. During his visit, the Myanmar president paid obeisance at historic Sujata Temple in Bakrar and visited Burmese Monastery in Bodh Gaya. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer. After laying red at the war memorial, General Chauhan said it was a matter of great honor for him to superannuate with a Tri-Services Guard of Honor. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar today said elections in India are conducted strictly in accordance with the Constitution, electoral laws and the transparent guidelines issued by the Election Commission. Addressing the second National Conference of Councils representing the Election Commission at the India International Institute of Democracy and Election Management in New Delhi, Mr. Kumar highlighted that around 1.8 crore personnel are deployed during Lok Sabha elections to ensure transparency, accountability and the conduct of free and fair polls. General Manager cum Officer in charge of NABARD Regional Office, Itanagar, S.V. Ranga Rao, called on Arunachal Pradesh Governor Lieutenant General retired K.T. Parnayak at Lok Bhavan in Itanagar today. During the meeting, they discussed on strengthening rural livelihood and enhancing economic opportunities for farming and rural communities across the state. The Governor advised the officials to ensure the timely and uninterrupted flow of credit to the agricultural sector, small-scale enterprises, cottage and village industries, artisans and rural entrepreneurs, enabling them to contribute meaningfully to the state's economy. He urged NABARD to continue supporting and nurturing such grassroots initiatives. The regional general manager of NABARD assured the governor that the organization will continue to work to meet the aspirations and expectations of the people of Arunachal Pradesh, particularly those belonging to the rural and agrarian communities. Minority Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that the first

मीडियम में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और साथ 104 FM MHz पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:11 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओ, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरुखा। कार्यक्रम जरुखा में आइए पहले आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों से। अब से थोड़ी देर में यानी संध्या के 6:20 पर मनपा कार्यक्रम शेदम नेरिम के अंतर्गत सुन पाएंगे सकादवा के अवसर पर मोनड्रटी एजुकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा बुद्धा पार्क तोंग में आयोजित 11वीं दिन का धर्म शिक्षण कार्यक्रम का शेष भाग। शाम 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। प्रतिवर्ष 31 मई को मनाए जाने वाले विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू के विभिन्न रूपों के सेवन के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने और तंबाकू मुक्त समाज बनाने के उद्देश्य से हम आपके लिए एक संक्षिप्त प्रस्तुत करते हैं आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में, जिसमें आप सुन पाएंगे खंडो डबा जांगमो जिला अस्पताल तवांग के एनसीडी सेल की मनोवैज्ञानिक सुश्री लोफसाइटन से तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों पर हुए एक भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे थोरजी ड्रेमा। आज शाम 7:32 पर साप्ताहिक कार्यक्रम सांझ और आवाज, इसमें श्रोताओं पहले आज आप सुन पाएंगे जोधा अकबर फिल्म से एक सांझ और उसी सांझ को जावेद अली की आवाज में तथा याराना फिल्म से एक सांझ और उसी सांझ को किशोर कुमार के आवाज में। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमे तराना में आप सुन पाएंगे।

शब्बास मिट्टू फिल्म से एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे आनंद ले पाएंगे। आज रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रेल, रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दीदी केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9 बजे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 31 मई को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। कल सुबह 10:37 पर हमारा प्रसारण आरंभ होगा। सुबह 10:45 पर भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। कल सुबह 11 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मन की बात का 134वीं कड़ी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात देशवासियों के साथ साझा करेंगे। उसके तुरंत बाद मनपा में अनुवाद आप सुन पाएंगे श्री लोपसांग नोरबू से। कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। इसके अंतर्गत श्रोताओं कल आप सुन पाएंगे लामा लोपसांग सिरिंग और साथियों से शेदोन योन्तन शीर्मा, कंदन हेमा और लामा छेपा। कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत। इसके अंतर्गत श्रोताओं कल आप सुन पाएंगे दीपिन बरुआ के आवाज में चंद आसमीय फिल्मी गीत। दोपहर 3:30 पर दैनिक कार्यक्रम मेरी बात, इसमें श्रोताओं कल आप सुन पाएंगे पीएम श्री जैन बी तवांग के कक्षा 9वीं के छात्र पेमा छो की नामों से एक वर्ता। कल दोपहर 3:33 पर महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत, इसमें आप आनंद ले पाएंगे निजा फिल्म से कविता से, फिल्म दिल धड़कने दो से सुनिधि चौहान, चक दी इंडिया फिल्म से हेमा सरदेसाई और फिल्म लुटेरा से मोनाली ठाकुर के आवाजों में चंद फिल्मी नगमे। कल दोपहर 3:50 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजिली। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 बजे कार्यक्रम नमतम लेरिम। 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। कल शाम 5:35 पर मनपा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे थुपतन शेड्रुबलिंग फाउंडेशन टोंग में हुए लामा छेपा का मंत्र उच्चार तथा शोक का अर्पण। शाम 6 बजे कार्यक्रम लेरिम सेडा। 6:10 पर कार्यक्रम जरुखा। कल संध्या 6:20 पर मनपा कार्यक्रम शेदन लेरिम। इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे थुपतन शेड्रुबलिंग फाउंडेशन टोंग में हुए लामा छेपा मंत्रोच्चरण का शेष भाग तथा भक्तों द्वारा तुलकु तेंजिन गिरमे रिमुचे को दीर्घायु प्रार्थना अर्पित। कल शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम महफिले कवाली। कल शाम 7:25 पर कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रदेशी समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। शाम 7:55 पर

देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कल रात्रि 8 बजे मन की बात का 134वीं कड़ी मोनपा में अनुवाद आप सुन पाएंगे श्री लोफसांग नोरबू से रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्किन तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9 बजे। तो श्रोता, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम जरूर का यहीं पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे मनपा में, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: yipa sakitawa jujinchin mkwar ngote na wasa nambur. Langinu tamache akashwani tawang kyansin chuso deshnubtik manbak lerimba na chasang tuitur. Langinu nubtik tuse nisongdu ta yukbu lerim akashwani tilikyar rileya chuso na hindi ka sengyur ning tuse nisnikarma lengache injika sengyur sanasa.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार को नया नेता चुना गया है। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। विधायकों ने उन्हें अपना नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना है। श्री शिवकुमार को नेता चुने जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी विधायकों को आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल नेपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी की निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला

0: JN Sports Complex in Polo, Shillong. In badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty advanced to the finals of the Singapore Open tournament. The pair defeated world number one South Korea's duo Seung Jae and Kim Won Ho 21-19-21-18 in the semi-final today. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हो गए हैं। आइए श्रोता आप सुनते हैं प्रतिवर्ष 31 मई को मनाए जाने वाले विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू के विभिन्न रूपों के सेवन के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाना और तंबाकू मुक्त समाज बनाने के उद्देश्य से हम आपके लिए एक संक्षिप्त प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा में। इसमें आज आप सुनिए खनुडवा जांगबो जिला अस्पताल तांग के एनसीडी सेल के मनोवैज्ञानिक सुश्री रफसा इटुन से तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों पर हुआ एक पेटवार्ता। भेंट करता है दोर्जी डेमा।
2: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा में। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है खंडोडोवा सांगमो जिला अस्पताल तवांग के डीटीसीसी सेल एनसीडी के साइकोलॉजिस्ट लोबसांग इटुन जी। तो लोबसांग इटुन जी, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
2: तो श्रोताओं, आज हम लोबसांग इटुन जी से तंबाकू का सेवन करने से हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान होते हैं, तो इस बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। तो लोबसांग इटुन जी, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि तंबाकू का सेवन करने से हमारे शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान क्या क्या होता है।
3: टोबैको सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि टोबैको सिर्फ आपके सेहत को नुकसान पहुंचाता है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा चीजें हैं, जैसे कि आपका सोशल लाइफ हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया, घर को लेकर एक्सपेंसेस हो गया, तो सभी चीजों में इफेक्ट करते हैं। आप लोग ने भी देखा होगा, आए दिन छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, काफी लोग स्मोक करके घूमते रहते हैं, तो उन सब चीजों को टोबैको कैसे एक चिल्ड्रंस के लाइफ में कैसे पेनिट्रेट करके अंदर घुस गया है ना, वो सब चीजें ना हो। जो मोस्ट कॉमन इन्फॉर्मेशन है, जो आई थिंक सबको पता है कि टोबैको कॉजेस कैंसर, अगर आप तंबाकू का सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको कैंसर होने का हाई चांसेस रहता है। सो कैंसर मे भी थोड़ा लेटेस्ट स्टेज में होगा, लेकिन उससे पहले और भी बहुत ज्यादा चीजों से लोगों को गुजरना पड़ता है। मान के चलिए कि सिगरेट का, से कोई बच्चा है, से सपोज 11-12 साल का है ना, उसको क्या हुआ कि उसका फैमिली में किसी ने बोला कि जाओ मेरे लिए तंबाकू लेके आओ या फिर जाओ मेरे लिए सिगरेट लेके आओ। फैमिली में पिताजी रहते हैं, अंकल्स रहते हैं, भैया रहते हैं, जो खुद दुकान नहीं जाते तो बच्चा को भेजते थे कि जाओ खरीद के लेके आओ, तो ऐसे में बच्चे चले जाते हैं दुकान पे, वो लेकर आते हैं। जैसे कि आपने कहा, उनको पता होता है कि ये हानिकारक है सेहत के लिए, फिर भी उन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर ये सच में इतना हानिकारक है तो मेरा जो पिताजी है या फिर मेरा जो भैया है या फिर मेरा जो अंकल है क्यों यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी जाग जाता है उस बच्चे के मन में। तो वो क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जब वो लोग शुरुआत करते हैं, तो तभी क्या होता है कि एक बार ट्राई किया, अच्छा नहीं लगा होगा, फर्स्ट टाइम में चक्कर आया होगा, उल्टी लगा होगा, व्हाट एवर रीजन, लेकिन क्या रहता है कि उनके मन में एक चीज रहती है, ओ मैंने आज कुछ नया ट्राई किया है, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसको दूसरी बार ट्राई करते हैं, तीसरी बार ट्राई करते हैं, ऐसा ही करके धीरे धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनको लत लग जाता है, क्योंकि सिगरेट भी ऐसा माना जाता है कि काफी एडिक्टिव है, उसमें निकोटिन रहता है, तो क्या होता है कि सिंस निकोटिन काफी एडिक्टिव सब्सटेंस है, तो उसका वजह से क्या होता है कि इंसान को पता है कि नहीं लेना चाहिए, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाते और वो कंटिन्यूसली स्मोक करते रहता है या फिर टोबैको को च्यू करते रहता है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो उसमें हम लोग को दिखाई देता है वो है ब्रेथ, उनका जो ब्रेथ है वो स्मेल करता है ना, एंड अगर आप च्यू कर रहे हैं तो आपका दांतों में पीलापन आ जाता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा चीजें होते हैं, घर में से सपोज किसी ने देख लिया है कि बच्चे सिगरेट पी रहे हैं या फिर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो क्या होता है कि माँ बाप डांटते हैं, कुछ घरों में तो पीटना भी चलता है, एंड एट द सेम टाइम मम्मी और पापा के बीच में यू नो एक ब्लेम गेम सा हो जाता है कि तुमने बच्चों को अच्छे से नहीं देखा है ना, बीइंग ए मदर तुमको ख्याल रखना चाहिए था, फिर मम्मी बोलेगा मे बी कि सिंस मेरा घर का बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बीइंग ए फादर

0: तुमको भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए. तो घरों में ये सब प्रॉब्लम भी रहता है. एंड धीरे धीरे धीरे अगर आप उसको कंटिन्यूसली यूज करते रहेगा तो कुछ कुछ सिम्टम्स है, कुछ कुछ लक्षण है जो आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कितना चल पा रहे हैं. एक नॉन स्मोकर को ब्रीदिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है कम्पेयर टू एक स्मोकर. आप बहुत जल्दी चलते वक्त थक जाएंगे, आपको लगेगा कि आपको सांस अच्छे से नहीं मिल रहे हैं. तो ये सब इनिशियल प्रॉब्लम्स है जो आपको दिखाई देगा. धीरे धीरे धीरे अगर आप फिर भी टबैको का कंजम्पशन करते रहेंगे, एंड माइंड यू कि टबैको को जब आप कंजम्पशन करते हैं, आप सिगरेट पीते हैं या फिर तंबाकू खाते हैं, तो आप टॉलरेंस बिल्ड करते जाते हैं. आज आप एक सिगरेट पी रहे हैं तो दो साल बाद भी आप एक सिगरेट ही पियेंगे, ऐसा नहीं है. टॉलरेंस डेवलप करना मतलब क्या है कि आपका बॉडी, आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसका टॉलरेंस बढ़ जाते हैं. तो क्या होता है कि आज आप एक सिगरेट पियेंगे, वन वीक बाद आप दो सिगरेट पियेंगे दिन में, एंड धीरे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दिन में एक पैकेट, दिन में दो पैकेट, तो वो सब हो जाते हैं. उन सब चीजों के लिए क्या होता है कि पैसा भी काफी खर्चा होता है. एट द सेम टाइम से सपोज आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जैसे कि हम लोग बात कर ही रहे थे कैंसर को लेके, आपका लंग्स में इन्फेक्शन हो गया से सपोज किसी चीज को लेके, तो उसमें क्या होता है ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है.
1: इस बीच मैं भी वही बोलना चाहूंगी कि हालांकि सिगरेट पीना, धूम्रपान करना और तंबाकू का सेवन करना सबके लिए हानिकारक है, ये सब जानते हैं
0: जी,
1: ये गलत काम है सब जानते हैं. लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ ये गलत काम है और किसी बड़ों के नजर में नहीं पीने से हो गया, किसी को क्या पता चलेगा, ऐसा लगता है. तो आप बताइए कि इससे कैंसर होता है तो कहाँ कहाँ किस तरह के कैंसर होते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे रेडियो के बहुत सारे लिसनर्स हैं और हर सैटरडे को हमारा स्वास्थ्य चर्चा, हम हेल्थ पर फोकस करते हुए एक प्रोग्राम करते हैं
0: जी.
1: तो शायद सुन के हमारे इस चर्चा का और चर्चे को मतलब और फ्रूटफुल रहे, क्योंकि किसी को कैंसर होते हैं तो वो बचते नहीं है
0: जी.
1: तो ऐसा सोच के शायद लोगों में और असर पड़ जाए. तो आप बताइए कि कैंसर होते हैं तो किस तरह के कैंसर होते हैं धूम्रपान करने के और तंबाकू का सेवन करने से.
0: अच्छा देखिए, कैंसर तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो तरीका के कैंसर आपको हो सकते हैं. से सपोज आप स्मोक कर रहे हैं तो हायर चांसेस है आपका लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका लंग्स कैंसर होने का चांसेस है. एंड से सपोज आप तंबाकू चबा रहे हैं, जर्दा वगैरह जो आजकल काफी मार्केट में अवेलेबल रहता है, खैनी वगैरह हो गया, वो सब अगर आप खा रहे हैं तो उससे आपका ओरल कैंसर होने का हाई चांसेस रहता है. आप मूवीज में पहले काफी बार दिया जाता है, आई डोंट नो इन मिनट देते हैं कि नहीं, या मुंह से पहले एक मे मुकेश करके है ना एक बार, तो वहां पे आपने देखा होगा कि उनके मुंह में कैंसर था, है कि नहीं. एंड कभी कभी आपके गले में कैंसर हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आपका जो धुआं है वो आपके एसोफेगस से ही जाता है. एट द सेम टाइम सिर्फ कैंसर ही नहीं, क्योंकि आई नो कैंसर बहुत जानलेवा बीमारी है, लेकिन उसके अलावा और भी काफी सारी बीमारियां हैं जो जानलेवा है. से एग्जांपल, आप स्मोक कर रहे हैं तो स्मोक करने से क्या होता है कि आपका स्ट्रोक आने का चांसेस हायर रहता है, आपका हार्ट अटैक आने का चांसेस हायर रहता है. एंड आई एम वेरी श्योर कि किसी को भी इन सब बीमारियों का शिकार नहीं होना होगा. अगर नहीं होना है तो इट्स बेटर कि तंबाकू से जितना हो सकते दूरी बनाए रखें. एंड काफी लोगों का सोचना ये भी रहता है कि बहुत लोग हैं, मैंने लाइफ में बहुत लोगों को देखा है तंबाकू खाते हुए, पर उनको तो कैंसर नहीं हुआ तो शायद मुझे भी नहीं होगा. ये भी सोच या फिर गलत फहमी आप जो भी कहे काफी लोगों पे रहता है, है कि नहीं. तो उनको अभी नहीं हुआ उसका मतलब ये नहीं कि उनको बाद में नहीं होगा. नॉट नेसेसरी कि डेफिनेटली होना ही है, बट आपका चांसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, हायर रहता है.
1: और हमारा आजकल का लाइफस्टाइल ऐसे है कि कुछ भी बीमारी बहुत जल्दी आ जाती है.
0: बीमारी जल्दी क्यों हो जाती है, क्योंकि हर किसी को काम करना है कि नहीं. सब लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने हेल्थ पे वो ध्यान ही नहीं दे पाते. एंड एट द सेम टाइम आपका जो वर्कलोड है वो आपको काफी स्ट्रेस देता है, एंड स्ट्रेस में कोई भी इंसान अच्छी तरह का फंक्शन नहीं कर पाता है. सो जिसके वजह से क्या होता है कि बीमारी में और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं
1: जी. मैंने जैसे कि पहले कही कि धूम्रपान करना, तंबाकू का सेवन करना सबके लिए हानिकारक है, बच्चे हो या बूढ़े हो, जवान हो, सबके लिए. लेकिन शुरुआत जो बच्चों से होता है, बच्चों नादानी में से ही, न समझ में से ही, वो सही गलत का पहचान नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं और आगे चलकर अपने परिवार को, अपने आप को और यहाँ तक कि हमारे समाज को भी नुकसान पहुँचाते हैं. तो इसमें बच्चे तो ना समझ होते हैं, तो इसमें मेरा ख्याल से जिसे आपने बताया कि परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ है, मतलब पेरेंट्स का, गार्जियंस का
0: जी.
1: तो उसको पॉकेट मनी ज्यादा दे देते हैं, तो पॉकेट मनी, हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा है. मेरा भैया ऐसे, किसी को दोस्त ऐसे कर रहा था धूम्रपान करते हुए, मैंने देखा है मैं भी कर लूं ऐसे सोच के. तो मेरा ख्याल से इसमें पेरेंट्स के भी बहुत बड़ा हाथ है. तो मैं चाहती हूँ कि

0: हमारे इस चर्चा को सुनकर वो अपने बच्चों पर भी ज्यादा फोकस करे, ध्यान दे, ताकि वो ऐसा गलत काम करना बैठे ना। और कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए, जैसा कि धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करना जानलेवा कोई बीमारी को आप इनविटेशन देना, सेम बात ही है
1: जी।
0: और सबके लिए ही हानिकारक है, बहुत खतरनाक जानलेवा बीमारी हो सकते हैं उससे। और मानते हैं अभी आधुनिकता का दौर है, बेशक समय के साथ चलना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतना आवश्यकता से ज्यादा आधुनिक हो जाते हैं। तो आजकल की लड़कियां भी धूम्रपान करते हैं, तो मैंने लोगों को अक्सर ऐसा कहते हुए सुना है कि लड़कियों को ज्यादा इससे प्रभाव पड़ती है। तो वो कहाँ तक से ही है आप बताइए।
1: देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि लड़कियों या फिर वुमेन को ज्यादा इफेक्ट होता है कंपेयर टू मैन, या बट ये बात है कि
0: आगे जाकर लड़की शादी करता है तो अपना फैमिली प्लानिंग करना पड़ता है, तो उसमें लड़की को प्रॉब्लम
1: जी
0: होती।
1: हाँ, देखिए,
0: उसने पहले धूम्रपान कर रखे अगर होते हैं तो।
1: ऐसा है कि ये जो बातें हैं, जैसे कि आपने कहा है कि औरतों पे शायद ज्यादा प्रभाव पड़ता है टबैको का, ऐसा है कि अगर से सपोज कोई महिला है एंड वो काफी सालों से स्मोक कर रहे हैं या फिर काफी समय से टबैको खा रहे, सो नो डाउट कि उनका रिप्रोडक्शन का जब समय आएगा, जब वो फैमिली प्लानिंग कर रहा होगा, बच्चा पैदा करने का समय आएगा, तो उसमें शायद प्रॉब्लमेटिक हो, क्योंकि फर्टिलिटी जो रेट है वो कम हो जाते हैं औरतों में। एंड एट द सेम टाइम से सपोज आप कंसीव किया भी है तो हायर चांसेस है आपका मिसकैरेजेस होने का कम्पेयर टू एक नॉन स्मोकर, है ना।
0: डेवलपमेंट में डिले होता है,
1: या एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस में नॉट नेसेसरी कि फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट में आ गया आपका कि कब से चलना स्टार्ट कर दिया है ना बच्चे ने, कब खड़ा हुआ है, कब से बोलना स्टार्ट हुआ है, ये सब क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट्स है, उसमें भी डिले होने का चांसेस है। एंड एट द सेम टाइम सम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ऑल्सो, है ना, जैसे कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में कितना फोकस्ड है, कितना अटेंटिव है, वो सब चीजों में भी क्या होता है कि काफी बार अफेक्ट किया जाता है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि जब हम लोग बच्चे जनने के बारे में बात करते हैं, है ना, बच्चा पैदा करने की बात करते हैं, तो मोस्टली फोकस वुमेन के ऊपर ही रहता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर आप एक मर्द है एंड आप काफी सालों से स्मोक कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है, जिसका वजह से क्या होता है कि कंसेप्शन में आपका तरफ से भी प्रॉब्लम होने का इक्वल चांसेस रहता है। सो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ औरतों में ही प्रॉब्लम्स होता है, मर्द में भी यू नो इक्वली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एंड अगर इस चीज को छोड़ के अगर हम लोग बाकी फिजिकल हेल्थ के बारे में अगर जानेंगे तो मेन एंड वुमेन में इक्वली इफेक्ट करता है टबैको का कंजम्पशन।
0: अभी आपने जैसे कि फिजिकली कुछ नुकसान होते हैं, ऐसा बीमारी होते हैं, ऐसा बोलने के बाद मेरे मन में और एक सवाल आया कि हाँ, फिजिकली कैंसर होना या कुछ और बीमारी होना हो तो फिजिकली आपको हार्म हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, तो तंबाकू का सेवन करने से क्या कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है?
1: देखिए, काफी सारे हैं, जैसा कि शुरुआत में हम लोग बात किया था, आई गेस निकोटीन के बारे में, है ना। तो निकोटीन क्या करते हैं, आपका ब्रेन में जाके आपको एक रिलैक्सिंग फीलिंग देते हैं। सो आप लोगों ने काफी बार देखा होगा मूवीज में, तो काफी बार आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखे होंगे कि जब भी एक्टर या एक्ट्रेस उनको किसी प्रकार का स्ट्रेस आता है तो वो बाहर जाके या फिर कहीं भी जाके स्मोक करते हैं। सो वो क्या है, वो कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए आपको एक रिलैक्सिंग फीलिंग देता है। सो अगर आप एवरी टाइम अपने स्ट्रेस को रिलीव करवाने के लिए स्मोकिंग का हेल्प लेंगे तो उससे क्या होता है कि आप एक आदत डेवलप कर लेते हैं। वो आदत क्या है कि आप स्ट्रेस को खुद से मैनेज नहीं कर पा रहे, आप एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हो उस चीज के लिए, है कि नहीं। सो मेनी टाइम्स वो स्ट्रेस को अगर आप बिना एड्रेस किए ऐसा अवॉइड करते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या हो सकता है, आपका डिप्रेशन होने का चांसेस काफी हायर रहता है, आपका एंजाइटी होने का चांसेस काफी हायर रहता है, एट द सेम टाइम सुसाइडल थॉट्स आने का काफी चांसेस हायर रहता है, क्योंकि आपको स्ट्रेस आ रहा है, आपको पता नहीं आपको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। सो ऐसे में ये सब बहुत सारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो आजकल काफी प्रेवलेंट है, अगर आप देखा जाएंगे तो, है कि नहीं। सुसाइड केसेस वैसे भी दुनिया में काफी बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन एंजाइटी का तो केसेस आए दिन आते रहते हैं, है ना
0: जी। और कुछ लोग ऐसा भी होता है जो अपने आप में खो जाते हैं
1: जी,
0: आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उससे कुछ मतलब नहीं होते है
1: जी,
0: ना
1: जी।
0: तो वो शायद मेरा ख्याल से जिस तरह से आपने बताया उससे मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है उसकी
1: जी। एक और चीज ये रहता है सिगरेट पीने से, ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिगरेट पिया है या फिर आप अगर आपने तंबाकू खाया है तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ऐसा रहता है कि जब आप एक छोटी गलती कर लेते हैं ना, तो बड़ी गलती करने में आपको हेजिटेशन

0: नहीं होते हैं। तो से सपोज आज एक 11-12 साल का कोई बच्चा है, आज उसने सिगरेट पिया है या फिर तंबाकू खाया है, 2-3 साल बाद वो अल्कोहल का सहारा लेंगे शायद, है ना,
1: कामों की तरफ वो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं ना।
0: क्यूरियोसिटी का भी एज है, एट द सेम टाइम एक्सप्लोर करने का भी समय, धीरे धीरे कैनबिस है कि नहीं। एंड इन दिनों आई थिंक आई होप आप लोग ने काफी सुना होगा कि ड्रग्स का केसेस भी काफी चल रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, हेरोइन एंड ऑल। सो वो सब वही है कि वंस आप एक गलती कर लेते तो बड़ी गलती करने में आप इतना हेजिटेट नहीं करते, तो इट्स बेटर कि आप पहली गलती ना करें।
1: जी,
0: है कि नहीं।
1: जी, तो क्योंकि आपने अभी बताया कि ड्रग्स भी लोग ले लेते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, तो इसकी शुरुआत वही जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं इसी से होते हैं, यानी कि तंबाकू का सेवन करना, धूम्रपान करना इसी से होते हैं ना।
0: नॉट नेसेसरी कि आप पहले तंबाकू का ही सेवन करेंगे उसके बाद ही जाके ऐसा होगा करके, बट जो चांसेस है, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, जो चांसेस है वो काफी हायर रहता है। एंड काफी बार देखा गया है कि जितने लोग भी ड्रग्स का सेवन करते हैं, हेरोइन में डिपेंडेंट होते हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं शुरुआती सब्सटेंस उनका तंबाकू ही रहता है। सो आई थिंक हम कह सकते हैं कि यू नो चांसेस आर हायर ऐसा करने।
1: जी, और एक सवाल मेरे मन में आया कि कुछ लोग ऐसा होता है पब्लिक प्लेसेस पे, सार्वजनिक स्थानों पर वो खुलेआम धूम्रपान करते हैं, तो वो अपने आपको तो हानि कर ही रहे हैं, नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन आसपास में पब्लिक प्लेस है, ऑब्वियसली वहाँ कुछ और लोग भी होंगे, तो उसका जो सेकंड हैंड धुआं होते हैं उससे जाके जो लोग आसपास में रहते हैं उसको ज्यादा असर पड़ती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
0: जी देखिए, ये जो सेकेंड हैंड स्मोक है ना,
1: जी
0: शायद काफी लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें है ना, अगर आप करो तभी आप भुगतेंगे, अगर आप ना करो तो आप ना भुगतेंगे, किसी लोगों का ये बिलीव रहता है। बट सिगरेट के केसेस में, नॉट नेसेसरी च्यूइंग टबैको में, बट स्मोकिंग टबैको जो होता है, जिसको आप स्मोक फॉर्म में लेते हो, उन केसेस में क्या होता है कि से सपोज आप स्मोक कर रहे हैं एंड हम या फिर कोई भी आपका क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, एंड जैसे आपने कहा पब्लिक प्लेसेस में, आए दिन हम देखते रहते हैं कि दुकानों में लोग आते हैं, सिगरेट खरीदते हैं एंड वहीं जला के यू नो पीना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस वक्त दुकान में जो रहते हैं या फिर एट द सेम टाइम जो दूसरे कंज्यूमर्स है जो दुकान आते हैं, उनको भी वो धुआं काफी हद तक अफेक्ट करता है। एंड मोस्टली अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर आप ओल्ड एज वुमेन है, या फिर अगर आपको अस्थमा है, तो आपको ज्यादा वो प्रॉब्लम देगा जो सेकेंड हैंड स्मोक है वो। एंड सेकेंड हैंड स्मोक से भी आपका कैंसर होने का इक्वल चांसेस रहता है जितना आप फर्स्ट हैंड स्मोकर को रहता है। तो आई थिंक ये जो चीज है हर किसी को पता रहना चाहिए कि नॉट नेसेसरी ये सिगरेट आपको तभी इफेक्ट करेगा जब आप खुद पी रहे होंगे, जब आप खुद उसका सेवन कर रहे होंगे। अगर कोई और कर रहा है एंड आप उसके पास है, तब भी आपको वो इक्वली हार्मफुल इफेक्ट करेगा। सो इसीलिए लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास पूरा राइट है किसी को मना करना कि आप मेरे सामने यहाँ स्मोक मत कीजिए। आपको कभी हेजिटेशन नहीं रहना चाहिए कि सिंस वो स्मोक कर रहे तो मैं क्यों इंटरफेयर करूं, है ना, मैं क्यों बोलूं, सिंस वो आपको इफेक्ट कर रहे हैं तो, एंड आपका इक्वल राइट बनता है क्योंकि आपके हेल्थ के बारे में तो आप कंसर्न रहेंगे ना, है क्या नहीं। तो विदाउट हेजिटेशन आप कभी भी किसी को बोल सकते हैं कि यहाँ स्मोक ना कीजिए क्योंकि ये मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं।
1: जी हम अभी तक बात कर रहे हैं कि तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, हानिकारक है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लेकिन दुकानों में तो शायद मेरे ख्याल से खुले आम बिकते हैं, तो इस पर आपके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और अन्य जो आपके साथ कुछ और डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, तो आप मिलकर उनके लिए क्या कार्रवाई करते हैं, क्या उनके लिए कोई कानून बनी है?
0: जी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ कानून है, कुछ प्रोविजंस है, जैसे आपने कहा है कि खुलेआम बिकते हैं उस पे कम्प्लीटली रोक लगाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सर्टेन प्रोविजंस रखा गया है ताकि किसी हद तक होने से भी उसको कंट्रोल कर पाए। तो उसी के अंदर एक एक्ट आता है कोतपा करके, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट करके, जो 2003 में इम्प्लीमेंट किया गया था। जैसे कि हमने कहा है सर्टेन प्रोविजंस है, सर्टेन सेक्शंस है, जैसे कि कुछ सेक्शंस है कि आप पब्लिक स्पेस में स्मोक नहीं कर सकते। अगर आप पब्लिक स्पेस में स्मोक कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट जुर्माना लिया जा सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। एंड कुछ ऐसे एक्ट्स भी है, सपोज अगर आप एक माइनर है तो माइनर को दुकान वाले कभी भी टोबैको का सेल नहीं कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम माइनर्स के द्वारा भी, सपोज आप एक पेरेंट है, आपका एक शॉप है, वहां पे आप अपने बच्चे को रख के उसके द्वारा भी नहीं सेल कर सकते हैं। तो उस पे भी क्या है, रोक लगाया गया है, उस पे भी फाइन्स है, उस पे भी यू नो आपका इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों ने देखा ही होगा कि एवरी टोबैको का जो पैकेट रहता है, बीट सिगरेट या तो फिर सादा, उसमें क्या होता है वार्निंग साइन दिया भैया रहता है कि तबे को कॉजस कैंसर

0: जी या फिर टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ. सो बिना वार्निंग्स का आप कभी टोबैको का सेल नहीं कर सकते हैं, एंड आप कभी इनकरेज नहीं कर सकते किसी को कि टोबैको कंजम्पशन करो, या फिर उसको आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते, आप उसका मार्केटिंग नहीं कर सकते. ये सब सर्टेन प्रोविजंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि इन सब चीज़ों में रोक लगाया जा सके.
1: तो लवसंग जी, आज आपने हमारे स्टूडियो में आए और टोबैको से क्या क्या हानि होते हैं इसके बारे में खूब सारी जानकारी दी, तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी. थैंक यू वेरी मच.
0: थैंक यू.
2: श्रोताओं, भी आपने हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत खंडो डोबाजांगमो जिला अस्पताल ताओ के एनसीडी सेल की मनोवैज्ञानिक सुश्री लोफसांग टुन से तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों पर हुए एक भेंटवार्ता सुना. भेंटकर्ता थे दोर्जी ड्रेमा.
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक. होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी. तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.
2: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय शाम के 7:31 हो गए हैं. लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज. कार्यक्रम का पहला साज आइए सुनते हैं फिल्म 14 अकबर सिंह.

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म जोधा अकबर से एक सांस सुना। आइए अब इसी सांस को सुनते हैं जावेद अली के आवाज में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम साझा आवाज यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। इस समय शाम के 7:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रदेशी समाचार 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अंगूरी शोभा। नबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ईटानगर के महाप्रबंधक सह प्रभारी अधिकारी एसवी रंगा राव ने आज ईटानगर स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पूरे राज्य में ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने और कृषि तथा ग्रामीण समुदायों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ाने पर चर्चा की। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कृषि क्षेत्र, लघु उद्यमों,

0: आज ईटानगर स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पूरे राज्य में ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने और कृषि तथा ग्रामीण समुदायों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ाने पर चर्चा की। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कृषि क्षेत्र, लघु उद्यमों, कुटीर एवं ग्राम उद्योगों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को ऋण का समय पर और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करें ताकि वे राज्य की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके। श्री राव ने राज्यपाल को आश्वासन दिया कि संगठनों, विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि समुदायों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्य करता रहेगा। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक के रूप में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि WWF इंडिया और वन विभाग के एक नए आकलन में समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हाथियों की मौजूदगी दर्ज की गई है, जो इसे दुनिया में कहीं भी दर्ज की गई हाथियों की सबसे ऊंची ज्ञात सीमा बनाती है। दिसंबर 2024 और इस साल मार्च के बीच पूरे राज्य में किए गए इस अध्ययन से हाथियों के वितरण, उनके आवासों के जुड़ाव और मानव हाथी संघर्ष के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि यह खो जाने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य के जंगलों, वन्य जीव गलियारों और जैव विविधता की रक्षा के महत्व को और भी पुख्ता करती है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक ने आज ईटानगर के लोकभवन में कुरुमकुमे जिले के उन छात्रों से बातचीत की जिन्होंने सैनिक स्कूलों में दाखिले के लिए योग्यता हासिल की है। छात्रों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने उनकी सफलता को कुरुमकुमे जिले और पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने APSC अधिकारी नांगरंग पिंकअप की सराहना की कि वे दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की पहल शुरू की थी। राज्यपाल ने भारतीय सेना के जवानों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों के समर्पण की भी प्रशंसा की। आज अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज APSTS के स्वर्ण जयंती समारोह के दूसरे दिन ट्रांसपोर्ट और संबद्ध मंत्री ओजिंग तासिंग और सलाहकार चाकत अबो ने आज तिराप जिले में भविष्य की ओर देखे थीम पर राज्य में ट्रांसपोर्ट के भविष्य पर आयोजित एक वर्कशॉप में हिस्सा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, विचारों, अनुभव और नए प्रयोगों के आदान प्रदान ने एक ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाने के सभी के साझा संकल्प को मजबूत किया जो ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार हो। APSTS के 50 शानदार वर्षों का जश्न मनाते हुए सभी को एक नई सोच और उद्देश्य के साथ आगे देखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों की यात्राओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। बीज उत्सव 2026 आज कई पन्नियोर जिले के याजली स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सम्पन्न हो गया। सीड्स ऑफ होप, आशा के बीच नामक एक पर्यावरण अनुकूल हरित पहल आज शुरू की गई। ये पूरे जिले में चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसमें समुदाय आधारित बीज संरक्षकों, स्कूली बच्चों, निशी और आपातानी आदिवासी परिषदों तथा गांव के युवा क्लबों को पर्यावरण के अग्रणी रक्षकों के रूप में संगठित किया गया है। इसके अलावा जिले में जल्द ही एक स्थायी कृषि जैव विविधता संसाधन और बाजार संपर्क केंद्र स्थापित किया जाएगा। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉक्टर सोम्या स्वामीनाथन ने राष्ट्रीय नीति निर्माण के उद्देश्य से जिले के स्थानीय पर्यावरणीय ज्ञान प्रणालियों को दस्तावेजों और प्रकाशित करने हेतु KVK केई पन्योर के साथ MSSRF की समर्पित अनुसंधान साझेदारी की पुष्टि की है। आज ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित बाकिन पर्टिन जनरल हॉस्पिटल में पैन अरुणाचल स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अस्पताल को लगभग 25 यूनिट रक्त दान किया गया। इस रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन गालो आओ डोनेशन ग्रुप द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर मिंगे लोई की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय प्रिया बादू। General Manager cum Officer in Charge of NABARD Regional Office, Itanagar, S.V. Ranga Rao, called on State Governor Lieutenant General Retired

널 뉴스라. 예, 아카시와니 카 다왕 켄드르 해 사베 샴 케 사트 바즈커 55 미닛 호 게 해. 리지 쇼다 페셰 देश भक्ति गीत का कार्यक्रम क्वामे तनाने, इसमें आज आप सुनिए सोनन किरकिरे के रचे बोल पर फिल्म शबास मिठू से कैलाश खेर, रुचिका और अमित त्रिवेदी की आवाजों में एक देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आपने कार्यक्रम कौमे तराने में फिल्म शाबाश मिठू से एक देशभक्ति गीत सुना। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश

किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। तो ऐशुदा कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं फिल्म काला पत्थर से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इस गीत को रचा है राजेश रोशन ने तथा संगीत दिया है साहिर लुधियानवी ने। गीत की फरमाइश की है पदमपुर श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोरा, कृति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा ने।

आनंद बख्शी के गीत पर श्रोताएं सुनते हैं कार्यक्रम में। अगली फरमाइश का गीत फिल्म हाथी मेरे साथी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत की फरमाइश की है चंडीगढ़ से सतीश अनिजा और बिमला अनिजा ने।

श्रोता, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में अंतिम फरमाइश का गीत फिल्म बेटा से अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण के आवाजों में। इस गीत के रचयिता समीर तथा संगीत दिया है अनंत मिलन ने। गीत की फरमाइश की है

तरवल नवनशहर पंजाब से, गगनदीप ठंडी, तृप्ता कुमारी ठंडी, डॉक्टर प्रियंका ठंडी, डॉक्टर प्रशांत ठंडी, डॉक्टर प्रेम ठंडी, बेबी ममिका और वानी ठंडी ने।

जिसके तहत हमने पेश किया आप सभी के वत्सल फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक वत्सल जरूर करें। हमारा वत्सल नंबर है 6033-914-908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइश पर आधारित हमारा यार रोमानी और या दोबारा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:15 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित अरुणाचल न्यूज से रात्रि 8:15 पर। रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कीम। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज से रात्रि

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शहनवाज खान और अर्जुनन रमन का शानदार प्रदर्शन, जीते स्वर्ण पदक। एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में गरिमा और दीक्षा ने स्वर्ण पदक जीता। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड और भारत के बीच मुकाबला जारी। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का महामुकाबला गुजरात टाइटंस से। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में, और भारत ने एशिया ओशोनिया चैंपियनशिप का खिताब तीसरी बार जीता। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स से, जहां कुश्ती खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है। अलग अलग स्पर्धाओं में उन्होंने स्वर्ण तो किसी में रजत पदक अपने नाम किए। हांगकांग में चल रही एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए कुल 3 पदक अपने नाम किए। इनमें 2 स्वर्ण, 1 रजत पदक शामिल है। पुरुषों के हाई जंप में भारत के बसंत 2.20 की ऊंची कूद लगाकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के लॉन्ग जंप में शहनवाज खान ने 7.84 मीटर की लंबी कूद के साथ स्वर्ण, और इसी वर्ग में जिथिन अर्जुनन रमन चंद्रशेखरन ने 7.66 की कूद के साथ रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता में लगातार जो खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन जारी है, अच्छा प्रदर्शन जारी है। वहां हाई जंप पर पूजा ने कल राष्ट्रीय और मीट रिकॉर्ड को सुधार कर उसमें गोल्ड मेडल जीता था। वहीं उन्होंने सहाना कुमारी का नेशनल रिकॉर्ड भी कल अपने को तोड़ करके अपने नाम नया रिकॉर्ड कायम किया था। चलते हैं वियतनाम, जहां कुश्ती अंडर 17 का मुकाबला जारी है। वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के महिला वर्ग में गरिमा और दीक्षा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। सुनते हैं कैसा रहा कुश्ती खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: एशियाई अंडर 17 कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अलग अलग श्रेणी में कई पदक अपने नाम किए। 73 किलोग्राम वर्ग में गरिमा ने मंगोलिया की नामुंत सेटसेक बेथबोल्ट को 18-6 से मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं 43 किलोग्राम वर्ग में दीक्षा ने उज्बेकिस्तान की मुखलिसा मशारी पोवा को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। 40 किलोग्राम वर्ग में पलक ने चीन की मिन्या फांग को 6-2 से पटकनी देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं 46 किलोग्राम वर्ग में अनामिका ने मंगोलिया की तनसर्मा बेटसूरी को 9-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। 53 किलोग्राम वर्ग में अक्षरा ने वियतनाम की थी हो थू बुई को 10-0 से हराया। वहीं साक्षी ने कजाकिस्तान की एरिना कोनी सोवा को 10-0 से हराकर पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया। 61 किलोग्राम वर्ग में मान्या राजपूत ने कजाकिस्तान की ही एगेरिम पोलटोबे को 10-0 से हराकर एक और कांस्य पदक भारत के लिए जीता। उधर पुरुषों के 71 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अनुज ने तुर्कमेनिस्तान के मेकान हुदे बेरेनोव को 4-2 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। महिलाओं के टीम रैंकिंग में भारत पहले, वहीं पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में भारत दूसरे स्थान पर है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भी खिलाड़ियों का लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। वहीं अभी अभी हमें ताजा जानकारी मिली है, जहां निकिता ने 39 किलोग्राम वर्ग में और अंतरा ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। सीधे लिए चलते हैं आपको इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, जहां पर महिला क्रिकेट का T20 मुकाबला जारी है। ब्रिस्टल में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा महिला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए हैं। भारत को इंग्लैंड ने 169 रन का लक्ष्य दिया है। भारत की ओर से अरुंधति रेड्डी ने 4 ओवर में 38 रन दिए। नंदनी शर्मा ने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। श्रेयंका पाटिल ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया। श्री चरणी ने 4 ओवर में 6.2 की इकोनॉमी रेट से 25 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किया। इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर, श्रेयंका पाटिल ने वापसी भी की है और 3 मैचों की श्रृंखला

0: में भारत 1-0 से आगे है। पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 60 विकेट पर 188 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 150 रन ही बना सकी थी। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 69 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप से पहले यह श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि आईसीसी विश्व कप जो है 12 जून से इंग्लैंड में ही खेला जाना है और भारतीय टीम इस श्रृंखला में अपने कॉम्बिनेशन को आजमाना चाहेगी। अब सीधे रुख कर लेते हैं आईपीएल क्रिकेट की ओर, जहां आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियन है, वहीं गुजरात ने भी 2022 में ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। सुनते हैं पूरे मैच का हाल।
1: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान टीम की शुरुआत निराशाजनक रही। यशस्वी जायसवाल बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। ध्रुव जुरेल भी 7 रन बनाकर कगिसो रबाडा का शिकार बने। वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 47 गेंदों का सामना करते हुए 96 रनों की शानदार पारी खेली। वैभव ने अपनी इस पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए। हालांकि रविन्द्र जडेजा 35 गेंदों में 45 रन बनाकर नाबाद रहे। अंतिम ओवरों में डोनोवन फेरेरा ने आतिशी बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 345 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 गेंद में नाबाद 38 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 214 रन लगाए। गुजरात टाइटंस की ओर से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट लिए। 215 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत शानदार रही। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 167 रन जोड़े। सुदर्शन 32 गेंदों का सामना करने के बाद 58 रन बनाकर आउट हुए। सुदर्शन लगातार दूसरी बार हिट विकेट होकर पवेलियन लौटे। वहीं गिल ने 53 गेंदों में 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 104 रन बनाए। गिल आईपीएल प्लेऑफ में शतक लगाने वाले पहले कप्तान भी बने।
2: दिस इज समथिंग एल्स, इट रियली इज समथिंग एल्स। व्हाट अ 100, व्हाट अ परफॉर्मेंस, लीडरशिप एट इट्स एब्सोल्यूट बेस्ट।
1: जॉश बटलर 9 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर 9 गेंदों में 16 रन बनाकर नांद्रे बर्गर का शिकार बने। राहुल तेवतिया 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाकर लौटे।
2: It's over now. Tabatia. And they'll march into Ahmedabad.
1: शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले में सबसे बड़ा रन चेज करने का रिकॉर्ड भी अब गुजरात टाइटंस के नाम दर्ज हो गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के नाम था, जिन्होंने आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर में 204 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था। आईपीएल में महज तीसरा मौका रहा जब गुजरात टाइटंस ने 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक चेज किया। मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि फाइनल में हमारा पूरा ध्यान बेहतर क्रिकेट खेलने पर होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अहमदाबाद में कल कौन सी टीम दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी। एक तरफ जहां रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पाने के इरादे से उतरेगी, वहीं शुभमन गिल की लीडरशिप में गुजरात टाइटन्स पहली बार ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब सीधे रुख कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां पर मेंस डबल्स जोड़ी ने बेहतरीन खेल प्रदर्शन आज दिखाया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं मिक्स डबल फाइनल में भारत की जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को जापान की सायका होबारा और युची शिमिगामी से हार का सामना करना पड़ा। इस जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 16-21, 21-17, 13-21 से हराया। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और अजस प्रणय और आज तनिषा क्रेस्टो और कपिला के बाहर होने के बाद अब भारतीय प्रशंसकों की निगाहें मेन्स डबल्स जोड़ी पर होंगी। अब सीधे रुख कर लेते हैं टेनिस की ओर, जहां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कल ब्राजील के जुआओ फोनसेका ने नोवाक जोकोविच को तीसरे दौर में हराकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। वहीं आज महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में अमांदा अनिसिमोवा और अरियाना सबालेंका अपने अपने मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगी, जबकि ईगा स्वायतेक पहले ही चौथे दौर में प्रवेश कर चुकी हैं। आइए जानते हैं उलटफेर।

0: के इस दौर में कौन से नए खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं।
1: फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में ये दूसरा बड़ा उलटफेर है। नोवाक जोकोविच से पहले यानिक सिनर भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। फोंसेका ने लगभग 4 घंटे 53 मिनट तक चले बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में जोकोविच को पराजित किया। शुरुआती दोनों सेट जीतकर जोकोविच मैच पर पूरी तरह से दबदबा बनाए हुए थे। इस दौरान जोकोविच कई बार थके हुए और शारीरिक रूप से परेशान नजर आए। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और निर्णायक 5वें सेट की शुरुआत में 3-1 की अच्छी बढ़त बना ली थी। फोंसेका ने फिर से वापसी की। उन्होंने आखिरी 8 में से 6 गेम अपने नाम करते हुए रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच को 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 से पराजित किया। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में एंड्री रूबेल को हराने के बाद ये किसी टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ फोंसेका की दूसरी जीत है। जोकोविच के खिलाफ अपने पहले टूर लेवल मुकाबले में जीत हासिल करने वाले फोंसेका ने नया इतिहास रच दिया है। वो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच को हराने वाले पहले युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। फोंसेका पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के चौथे दौर में पहुंचे हैं। अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए कल उनका मुकाबला 15वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूट से होगा। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: अभी हमें ताजा जानकारी मिली है, सबालेंका ने अपने मुकाबले में जीत दर्ज कर ली, वहीं अनिसिमोवा को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने तीसरी बार जीता एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने अल्ट्रा रनिंग में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान के हिरोसाकी में हुई आईएयू एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की 24 घंटे दौड़ में भारत ने इतिहास रच दिया है। टीम ने न सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल अपने नाम किए बल्कि पूरे व्यक्तिगत पोडियम पर कब्जा जमाया। अमर सिंह देवंदा ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। गिनो एंटनी ने रजत और सौरभ कुमार रंजन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। तीनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय पुरुष टीम ने कुल 815.833 किलोमीटर की दूरी तय कर टीम गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये प्रदर्शन एशिया ओशिनिया स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर रहा और किसी भी एशियाई देश का आईएयू चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी माना जा रहा है। मुकाबले में जापान दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा। महिला वर्ग में भारत ने कुल 667.722 किलोमीटर की दूरी तय कर टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता। जापान ने गोल्ड और ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया। भारतीय महिला टीम की ओर से तेंजिन डोलमा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 228.939 किलोमीटर दौड़ लगाई और कुल मिलाकर चौथा स्थान हासिल किया। इसी के साथ उन्होंने नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। भारत ने 2022, 24 और अब 2026 में लगातार तीसरी बार 24 घंटे अल्ट्रा रनिंग एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: बात कर लेते हैं महिला हॉकी पर। जापान के काकामिगाहारा में अंडर 18 महिला हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर अपने अभियान का आगाज किया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज शिलोंग के जेएन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एकीकृत आतिथ्य और खेल परिसर का उद्घाटन किया। बात कर लेते तीरंदाजी पर। स्लोवानिया के खामनिक में तीरंदाजी प्रतियोगिता के पुरुषों के रिकर्व वर्ग में भारत के सचिन गुप्ता फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका सामना कल कजाकिस्तान के इल्फत अब्दुलन से होगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.aar@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल

नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और

0: कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि सीएलपी नेता का चयन का कार्य एआईसीसी को सौंप देना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये

उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।